नेपाल भाषा समाचार जे पेशपाखे निनादिस थौ नेपाल सम्बत चिन्ससो पिको द बचलागा अमाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल या त महालेखा परीक्षकका आर्थिक तह 2081-82 प्रतिवेदन लल हागुदु राष्ट्रपति भवन हिग वेक या त महालेखा परीक्षक तोयम राया प्रतिवेदन लल हाँदिको ख राष्ट्रपति पौडेल आफ्नो बेरोजु जुगली याक्न सार्वजनिक निकाय जवाबदेहिता पारदर्शिता वा आर्थिक अनुशासन या त बहव्याधिको दु वेकल आर्थिक अनुशासन याना देशे शान्ति सुशासन विकास वा समृद्धि हे फैगु नेतना दिल देया मुक बेरुजु नेगु खर्प दासिवे अप अध्यङ्गुदो मालिका परिषद ज्याकु राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल या त ललहागु प्रतिवेदने बेरुजु दा नेगु खर्प थेङ्गु धयातगुदो मालिका परिषद ज्याकु आर्थिक तह 2081-82 सँगसँगै प्रदेश स्थानीय तह संगठित संस्था व संघीय कानून कोचनातगो संस्था व समिति या गुइपेङ्गो खर्ब चेपेङ्गो अर्ब व नेगु करोड दाय या लेखा परीक्षण यागु ख पदौ 23-24 गते या आन्दोलन या क्षति जुगुली सचिव नेगुइगु ज्याकुई क्षति जुग्ली छगु खर्ब व पी नेगु अर्ब गुइगु करु दा या लेखा परीक्षण जी मफुगु थागुदु सरकार सार्वजनिक खरिदे मित बे जुया मा कथञ्जक नुगु हलजुल न्यात उज ब्युगुदु प्रधानमन्त्री व मन्त्री परिषद ज्याकु सरकार या फुक्क मन्त्रालय आयोग सचिवालय सरकारी निकाय मुख्यमन्त्री ज्याकु व फुक्क प्रदेश पौछोया थते उज ब्युगु ख मन्त्री परिषद माची मुवाक नुगु हलजुल मन्यात व दुगु ज्याभ फर्निचर व सवारी साधन यात छेले त ब ब्युगु ख सूचना तथा संचार मन्त्री डाक्टर विक्रम तिमिलसिन्हा संविधान प्रत्यावध यागु प्रेस व अभिव्यक्ति स्वतन्त्र जागु मौलिक हक विरुद्ध सरकार छुन पला मछेलेगु नेतनादिगु दु संचारीका पुच नेपा नाप मन्त्रालय समिक जुगु नाप्या ज्या वेक्ल सरकार प्रेस स्वतन्त्र प्रति पुङ्क प्रतिबद्ध दु थाइदिगु दु संचार लागे ज्या यपी पत्रकार पिन्स ज्यालाका मदैगु श्रम अधिकार छेलबुला मवैगु व असुरक्षित लकसे ज्या या मालिगु अवस्था नङ्केत मन्त्रालय महाकथ कुत यागु मन्त्री डाक्टर तिमिसिना धैदिगुदु कृषि वन व पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरी कृषि पेसा या त मर्यादित व आकर्षक देखेत नीतिगत सुधार व स्रोत व्यवस्थापन या त मन्त्रालय प्रतिबद्ध जुगु धैदिगुदु कृषि सहकारी व प्राकृतिक स्रोत समिति या मिगचुङ्गु मुज्या मन्त्री चौधरी कृषि लागाय शिक्षा अनुसन्धान व प्रविधि या त इलकथ जनमुखी यागु नेतादिगु ख मुज्या सांसद पिन्स देशी सा या हुनी बुङ बाली स्याङ्गुली वाङ्गु हाइड्रोजन छेला सा देके माधका स थुएका दिल अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फा नेतृत्व या त तयातको निलम्बन राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेप फुकुवा यागुदो एन्फा मु छ्याञ्जेलिस या पदाधिकारी पिन्स मिग शिक्षा व खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेल लिसे पिन्त नाप्लना सहल ब्याकितुङका निलम्बन फुकुवा यागु सहमति जुगु ख थोसिबेन्ह राखेपा तोक मची ब्युगु उज पालना मयागु धासे वङ्गु चैत्र 11 गते खेलकुद विकास एन 2077 या दफा 29 या 2 या त नु या एन्फा नेतृत्व त निलम्बन यागु कोसुगु ख नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी केन्द्रीय दाबारी या पदे केन्द्रीय दुज उमेश श्रेष्ठ या त लिगुदु पार्टी सभापति गगन कुमार थापा पार्टी या विधान कथ श्रेष्ठ या त मिग दाबारी लियादिगु ख थो न्हनेन श्रेष्ठ पार्टी दाबारी ख लुम्बिनी प्रदेश सरकार मन्त्रालय ल्या मोह यागु कोसुगुदु प्रदेश मन्त्री परिषद मिगचुङ्गु मुज्या साउन 1 गते निसे छेलिगु कथ प्रदेश च्यागुजक मन्त्रालय तेगु कोचुगु ख प्रदेश आ चिनिगु मन्त्रालय दु

ई सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दिवास थिक विजय झासँग सुनल जा मैथिली भाषामा समाचार। मधेसके महतरी सहित प्राचीन मिथिला क्षेत्रमे आइ विवाहित मिथिलानी वर्षायत पर्व मनाबि रहल छथि। जेठके अमावस्याके दिन अटल सौभाग्यके कामना करैत ई पर्व मनेबाक परम्परा अछि। वट सावित्री पर्व कहल जावला ई विवाहित मिथिलानी अपन अपन बस्तीमेके वट वृक्ष नजदीक जमा भऽ कऽ सामूहिक रूपमे मनबै छथि। नया नया कपड़ा पहिरकऽ मिथिलानी सती सावित्रीके उच्च चरित्रके वर्णन कयल गेल गीत सामूहिक रूपमे गबैत अपन अटल सौभाग्यके कामना करै छथि। एहि अवसर पर सावित्रीके कथा सेहो सुनल जाइत अछि। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कृष्ण प्रसाद यादव जेठ 8 गते विश्वास के मत लेता। प्रदेश सभा से शुक्र दिन विश्वास के मत लेबाक कार्यक्रम रहल बावजूदो तैयारी नहीं पहुंचल कहित जेठ 8 गते के लेल घुसकायल गेल अछि। मुख्यमंत्री यादव शुक्र दिन विश्वास के मत लेबाक कहि कऽ प्रदेश सभा सचिवालय में पत्र पठौलाक बाद सभामुख राम आशीष यादव मधेस प्रदेश प्रमुख के सिफारिश बमोजिम प्रदेश सभा के सातम अधिवेशन आह्वान कयने छलथि, मुदा बैठक शुरू होबय से पहिनहि मुख्यमंत्री यादव विशेष कारण देखबैत प्रदेश सभा सचिवालय में दोसर पत्र पठाबि कऽ विश्वास के मत के लेल जेठ 8 गते के समय निर्धारण कऽ देबा लेल आग्रह कयलनि। एहि पश्चात सचिवालय एक हफ्ता समय आगू बढ़ा कऽ जेठ 8 गते के लेल नया समय तोकलक अछि। नेपाल ऊर्जा तथा आपूर्ति श्रृंखला के अवरोध रोकऽ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लागत चाही पर जोर दिलक अछि। राष्ट्र संघीय आर्थिक तथा सामाजिक परिषद के विशेष बैठक के श्रव्य दृश्य के माध्यम से शुक्र दिन संबोधन करैत परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल एहि बात पर जोर देलनि अछि। संयुक्त राष्ट्र संघ के लेल न्यूयॉर्क स्थित नेपाल के थाई नियोग के अनुसार मंत्री खनाल वैश्विक ऊर्जा तथा आपूर्ति श्रृंखला में आबि रहल अवरोध सब तथा आई के टिकाऊ विकास में रहल असर सब के संबंध में मंतव्य व्यक्त करैत पश्चिम एशिया के द्वंद्व से नेपाल के प्रभावित कने बतौलनि। द्वंद्व के कारण उत्पन्न संकट में सबसे अधिक भार छोट आ अधिकतम विकसित राष्ट्र सब के पड़ला से अई देश के असगरे नहीं छोड़ कर हस्तक्षेप करब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जिम्मेवारी भेल, मंत्री खनाल बतौलनि। सरकारी स्वास्थ्य संस्था में अधिक धनराशि खर्च कर खरीद कयल गेल अत्याधुनिक उपकरण लंबा समय से गोदाम में अहिना राखल गेल भेटल अछि। महालेखा परीक्षक के कार्यालय हिसाबी शुक्र दिन राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के बुझौने 63वां वार्षिक प्रतिवेदन में सरकारी स्वास्थ्य निकाय समय 51,49,00,000 से अधिक मूल के उपकरण उपयोग विहीन रहल उल्लेख कयल गेल अछि। नागरिक के गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध करेबाक उद्देश्य के संग खरीद कयल गेल उपकरण संचालन में नहीं अयला से नागरिक निजी अस्पताल जाय लेल बाध्य भेल आ राज्य के लगानी व्यर्थ जा रहल प्रतिवेदन में लिखल अछि। राष्ट्रीय ट्रामा सेंटर में 5,37,82,000 बरोबरी के कैथलैब मशीन जनशक्ति के अभाव के कारण 2072 साल से प्रयोगविहीन अवस्था में रहल अछि। अहिना 24,77,09,000 बरोबरी सीटी स्कैन सिस्टम 14 वेंटिलेटर आ 5 सीआर मशीन सेहो संचालन में आबि सकल अछि। अहिना कऽ शुक्रराज ट्रॉपिकल तथा सरुआ रोग अस्पताल में 72,60,000 मोल के ECG केबुल 300 गजेंद्र नारायण सिंह अस्पताल में 4,90,95,000 बरोबरीक एक्सरे मशीन इंडो यूरोलॉजी लैप्रोस्कोपी सिस्टम एनेस्थीसिया मशीन जेहन इलेक्ट्रोकार्डियोलॉजी उपकरण सेहो प्रयोगविहीन अवस्था में रहल अछि। सिंह दरबार वैद्यखाना विकास समिति में सिंगल रोटरी टैबलेटिंग मशीन एयर कंप्रेसर इंजेक्ट कोडर डबल कोन ब्लेडर ऑटोमैटिक हाई स्पीड लेबलिंग मशीन वैलर क्लोड मशीन इलेक्ट्रिक ट्रे ड्रायर लगायत उपकरण लंबा समय से अहिना राखल गेल अछि। विभिन्न 60 प्रकार के मशीन तथा नेपाल प्रहरी अस्पताल में 16 स्लाइस सीटी स्कैन 1.5 टेस्ला MRI मशीन लगायत उपकरण सेहो उपयोग विहीन रहल प्रतिवेदन में उल्लेख अछि। स्वास्थ्य सेवा विभाग एहि वर्ष 965 हाई बोर्ड आ 965 इलेक्ट्रॉनिक वेट स्केल खरीद में 6,73,21,000 खर्च केने बावजूदो अगला वर्ष खरीद कयल गेल 6,53,99,000 बरोबरीक 1,336 इलेक्ट्रॉनिक वेट स्केल सेहो प्रयोगविहीन अवस्था में रहल अछि। अहिना 2,42,54,000 के 133 विभिन्न 7 प्रकार के उपकरण सेहो अहिना राखल गेल अछि। बीपी कोराला मेमोरियल कैंसर अस्पताल के टेलीथेरेपी मशीन 4 वर्ष बंकर में प्रयोगविहीन अवस्था में रहल अछि। ई मशीन भीतर रहल रेडियोधर्मी स्रोत के आयु
समाप्त होबय लाग्ला सँ विकिरण जोखिम सेहो बढ़ल उल्लेख अछि। महालेखा परीक्षक के कार्यालय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के एहन उपकरण के प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित करबाक लेल अनुगमन करबाक लेल तथा समग्र लागत तैयार कऽ व्यवस्थापन करबाक लेल सुझाव देलक अछि। त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत विभिन्न विश्वविद्यालय की अतिक्रमित जमीन फिरता कऽ उचित संरक्षण के संगे आय मूल में कार्य में उपयोग करबाक लेल महालेखा परीक्षक के 63वां वार्षिक प्रतिवेदन 2083 सुझाव देलक अछि। प्रतिवेदन सँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अंतर्गत निकाय के पूर्ण स्वामित्व में 1,31,22,000 वर्ग किलोमीटर, भोगाधिकार 9,99,000 वर्ग मीटर समेत अन्य 6,53,000 वर्ग मीटर समेत 1,47,84,000 वर्ग मीटर जमीन अतिक्रमण भेल जनौलक अछि। तहिना सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय माथात के टीकापुर बहुमुखी कैंपस 380 बीघा जमीन मध्य 300 बीघा तथा पोखरा विश्वविद्यालय के स्वामित्व में रहल पोखरा महानगरपालिका के विभिन्न वार्ड में नेपाल सरकार सँ भोगाधिकार प्राप्त 1,372 रोपनी 13.3% जमीन मध्य 652 रोपनी से अधिक अतिक्रमण भेल देखल गेल अछि। विश्वविद्यालय सब संपत्ति के केंद्रित लागत राखि कऽ संबंधित निकाय से समन्वय कऽ अतिक्रमित जमीन फिरता का उचित संरक्षण करबाक संगे आय मूलक कार्य में उपयोग करबाक चाही प्रतिवेदन में उल्लेख रहल अछि। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय के नाम दुरुपयोग कर राष्ट्र सेवक कर्मचारी के धमकाव वाला धय यात्रा सृजना करय वाला जेहन अमर्यादित सबके प्रयोग कर कने व्यक्ति काठमांडू से पकड़ा ले छे। जिला प्रहरी परिसर काठमांडू के टोली आय सुर्खेत घर भ काठमांडू शंखमूल रही रहल 22 वर्ष के प्रकाश खड़का के पकड़ने परिसर के प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक पवन कुमार भट्टराय अय के जानकारी दिलन। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय से बाजल गेल कहित दलेख के दुलू नगरपालिका वार्ड नंबर 13 के वड़ा सचिव कमल भंडारी के फोन मार्फत धमकी देने ऑडियो सार्वजनिक भेल छल। मध्य प्रदेश के 8 जिला मध्य परसा जिला में HIV एड्स संक्रमित रोगी के संख्या सबसे अधिक रहल भेटल अछि। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय के हिसाबे परसा में मात्र 1,504 गोटी HIV एड्स के रोगी छथि। निर्देशनालय के हिसाबे आर्थिक वर्ष 2081-82 में मध्य प्रदेश में 4,680 गोटी HIV संक्रमित रोगी एंटीट्रोवायरल थेरेपी उपचार में रहल अछि। प्रदेश अंतर्गत धनसा में 886, सरलाही में 558, सिरहा में 457, रौतहट में 422, महोदरी में 371, बारा में 288 तथा सप्तरी में 194 गोटे संक्रमित रहल अछि। जानकी मंदिर सहित के जनकपुर धाम के ऐतिहासिक संपदा सब के संरक्षण के संदेश सहित हेरिटेज वॉक सैकड़ों व्यक्ति सब सहभागी भ संपन्न कलक अछि। जनकपुर धाम में जारी रहल जनकपुर साहित्य महोत्सव के दोसर दिन आइ कार्यक्रम संपन्न भेल अछि। जनकपुर धाम के धार्मिक सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक स्थल के महत्व के उजागर करैत जानकी मंदिर के यूनेस्को के विश्व संपदा सूची में सूचीकृत करबाक अभियान के थप बल पहुँचे उद्देश्य से आयोजना कायल गेल हेरिटेज वॉक में विद्यार्थी युवा सुरक्षाकर्मी तथा सर्वसाधारण के उल्लेखनीय सहभागिता रहल छल। हेरिटेज वॉक जनकपुर धाम के प्रसिद्ध जानकी मंदिर परिसर से शुरू भेल छल। हेरिटेज वॉक के समापन पश्चात आयोजित कोर सभा के संबोधन करे धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 से निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य मनीष झा जानकी मंदिर के विश्व संपदा सूची में सूचीकृत करबाक प्रक्रिया आगू बढ़ रहल जानकारी दिलन। वह संबंधी प्रस्ताव मंत्री परिषद से पारित भेलाक बाद औपचारिक प्रक्रिया में आगू बढ़ब से बतौलन। धौंसा के मिथिला नगर पालिका क्षेत्र भीतर के सामुदायिक विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम से पठन पाठन आ निःशुल्क सवारी सुविधा से विद्यार्थी के आकर्षण बढ़ लागल अछि। सामुदायिक विद्यालय में गुणस्तरीय शिक्षा देबाक उद्देश्य से एतुका अधिकांश विद्यालय अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाव शुरू कलाक बाद विद्यार्थी के चाप बढ़ लागल अछि। आब खेल समाचार। ICC विश्व कप क्रिकेट लीग 2 अंतर्गत घरेलू श्रृंखला में नेपाल अमेरिका विरुद्ध 9 विकेट से जीत हासिल कलक अछि। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट रंगशाला में आई भेल खेल में अमेरिका दिने 195 रन के लक्ष्य में नेपाल 9 विकेट से विजयी भेल अछि। नेपाल के लेल ओपनर द्वय कुशल भुर्तेल आ आसिफ शेख 154 रन के योगदान देलथि। भुर्तेल शतक संगे नॉट आउट प्रदर्शन के कारण नेपाल 196 रन के लक्ष्य सहजे पूरा कयने छल। ओ 13 चौका 4 छक्का के मदद में 118 बॉल खेल के 120 रन बनौने छलथि। आसिफ 72 बॉल में 8 छक्का के मदद से 58 रन बनाकर आउट भेल छलथि। अय जीत संगे सातम स्थान में रहल नेपाल 20 अंक बनौलक अछि। छठम स्थान में रहल कैनेडा के 21, पाँचम स्थान में रहल नामीबिया के 22, खेल तालिका के अंत में रहल UAE 14 अंक बनौने अछि। तो स्कॉटलैंड 38 अंक सहित खेल तालिका के अग्र स्थान में रहल अछि।
अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीन शुक्र दिन लिजियान वाहक रकेट प्रक्षेपण करैत 5 उपग्रह सफलतापूर्वक अन्तरिक्षमे पठौलक अछि। ई रकेट उत्तर पश्चिम चीन स्थित डोंगफेंग व्यावसायिक अन्तरिक्ष नवपर्तन परीक्षण क्षेत्रसँ दिनके 12:33 बेजिङ समय हिसाबे प्रक्षेपण कयल गेल छल। रकेटसँ सभ उपग्रह सभके सफलतापूर्वक निर्धारित कक्षामे पहुँचाओल गेल जनाओल गेल अछि। सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दिवाससँ सुनि रहल मैथिली भाषामे समाचार।

0: ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। त्रिभुवन विश्वविद्यालय सहित विभिन्न विश्वविद्यालयों की सैकड़ों रोपनी जमीन अतिक्रमित जमीन वापस लेकर उचित संरक्षण और आयमूलक कार्यों में उपयोग करने की महालेखा की सुझाव। पश्चिम एशिया संघर्ष रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सक्रिय होने की बात पर नेपाल ने दिया जोर और ताइवान को एकतरफा रूप से चीन से स्वतंत्रता की घोषणा न करने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। त्रिभुवन विश्वविद्यालय सहित विभिन्न विश्वविद्यालयों की अतिक्रमित जमीन वापस लेकर उसका उचित संरक्षण करने तथा आयमूलक कार्यों में उपयोग करने की सुझाव महालेखा परीक्षक की 63वीं वार्षिक प्रतिवेदन 2083 में दी गई है। प्रतिवेदन के अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय और उसके अधीन स्थल निकायों के पूर्ण स्वामित्व में मौजूद 1,31,22,000 वर्ग मीटर, भोगाधिकार के 9,99,000 वर्ग मीटर तथा अन्य 6,53,000 वर्ग मीटर समेत कुल 1,47,84,000 वर्ग मीटर जमीन अतिक्रमित हुई है। इसी प्रकार सुदूर पश्चिम विश्वविद्यालय के अंतर्गत टीकापुर बहुमुखी कैंपस की 380 बीघा जमीन में से 300 बीघा तथा पोखरा विश्वविद्यालय के स्वामित्व में पोखरा महानगर पालिका के विभिन्न वार्डों में नेपाल सरकार से भोगाधिकार के रूप में प्राप्त 1,372 रोपनी 13 आना 3 ऐसा जमीन में से 652 रोपनी से अधिक जमीन अतिक्रमित होने की बात प्रतिवेदन में उल्लेख की गई है। प्रतिवेदन में कहा गया है कि विश्वविद्यालयों को अपनी संपत्तियों का केंद्रीय अभिलेख रखकर संबंधित निकायों के समन्वय में अतिक्रमित जमीन वापस लेकर उसका उचित संरक्षण करना चाहिए तथा उसे आयमूलक कार्यों में उपयोग करना चाहिए। सरकार द्वारा मंत्रालयों की संख्या में फेरबदल किए जाने के बाद अब सिंहदरबार में नए मंत्रालयों के नाम लिखने और पुराने नाम हटाने का काम शुरू हो गया है। सरकार ने नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली 2083 पारित कर राजपत्र में प्रकाशित करने के बाद मंत्रालयों की संख्या 22 से घटाकर 18 कर दी गई है। सरकार ने कार्य विभाजन नियमावली के माध्यम से पहले के 8 मंत्रालयों को यथावत रखा है, जबकि कुछ मंत्रालयों का विलय कर दिया गया है। साथ ही विज्ञान प्रविधि तथा नव प्रवर्तन मंत्रालय का नया गठन किया गया है। पूर्व के युवा तथा खेलकूद मंत्रालय, खाने पानी मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय की इमारतें खाली कराई जा रही है। इनमें से कुछ मंत्रालयों का विलय किया गया है, जबकि कुछ के नाम बदले गए हैं। परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल ने ऊर्जा तथा आपूर्ति श्रृंखला में आ रहे अवरोधों को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सक्रिय होने पर जोर दिया है। राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक परिषद की विशेष बैठक को श्रव्य दृश्य माध्यम से संबोधित करते हुए मंत्री खनाल ने कहा कि वैश्विक ऊर्जा और आपूर्ति श्रृंखला में उत्पन्न बाधाओं तथा उसके दीर्घकालीन विकास पर पड़ने वाले प्रभावों के कारण पश्चिम एशिया का संघर्ष नेपाल को भी प्रभावित कर रहा है। मंत्री खनाल ने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वहां काम कर रहे 20 लाख से अधिक नेपालियों के परिवार बढ़ती ऊर्जा कीमतें, घटते विपरेशन और पर्यटन क्षेत्र में आई सुस्ती से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि संघर्ष से उत्पन्न संकट का सबसे अधिक भार छोटे और अधिकतम विकसित देशों पर पड़ रहा है, इसलिए ऐसे देशों को अकेला न छोड़कर हस्तक्षेप करना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जिम्मेदारी है। सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में भारी धनराशि खर्च करके खरीदे गए अत्याधुनिक उपकरण लंबे समय से गोदाम में पड़े हुए पाए गए हैं। महालेखा परीक्षक कार्यालय द्वारा प्रस्तुत 63वीं वार्षिक प्रतिवेदन में कहा गया है कि सरकारी स्वास्थ्य निकायों में 51,49,00,000 से अधिक मूल्य के उपकरण उपयोग में नहीं लाए जा रहे हैं। प्रतिवेदन में कहा गया है कि नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खरीदे गए उपकरणों का संचालन न होने के कारण नागरिक निजी अस्पतालों की ओर जाने को मजबूर है, जिससे राज्य का निवेश भी व्यर्थ जा रहा है। राष्ट्रीय ट्रमा सेंटर में 5,37,82,000 मूल्य का कैथ लैब मशीन जनशक्ति के अभाव में 2072 साल से उपयोग में नहीं है। इसी तरह 24,77,09,000 मूल्य का सीटी स्कैन, 14 वेंटिलेटर और 5 सी आम मशीन भी संचालित नहीं है। इसी प्रकार शुक्र राज ट्रॉपिकल तथा सरुआ रोग अस्पताल में 72,60,000 मूल्य के 300 ECG केबल, गजेंद्र नारायण सिंह अस्पताल में 4,90,95,000 मूल्य के एक्सरे मशीन, एंडो यूरोलॉजी लैप्रोस्कोपी सिस्टम, एनेस्थेसिया मशीन तथा इलेक्ट्रोकार्डियोलॉजी उपकरण भी उपयोग विहीन पाए गए हैं। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
1: नेपाल टेलीकॉम को 4G।